0: गलत है, हनुमान का हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है, चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे, जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे, जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
1: एंड वेल द प्राइम मिनिस्टर लेट लास्ट नाइट रिलीज्ड अनदर वीडियो मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, दिस टाइम रिस्पोंडिंग टू वायरल वीडियोज ऑफ यंग वुमेन अब्यूजिंग हिम ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। ही सेड दैट द एंटायर कंट्री वॉच्ड व्हाट हैपेंड। द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड द लैंग्वेज यूज्ड एज शॉकिंग, इंक्लूडिंग अब्यूसेस दैट वर डायरेक्टेड एट हिज मदर, बट इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग पनिशमेंट प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वॉन्ट्स टू फॉरगिव व्हाट ही कॉल्ड द मिसलेड यूथ ऑफ द कंट्री, एडिंग दैट लीगल एक्शन इज नॉट द सोल्यूशन, दैट सोसाइटी मस्ट हेल्प गाइड यंग पीपल इन टू द राइट पाथ।
2: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
3: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
4: अलांटी प्रधानमंत्री चाला मंदी आयन मीद माटलांटा उंटे, आयन्नि अनकूडनि माटलांटा उंटे ना गुंडे कदिलिंचेसिंदि, ना कन्नीळ्ळु वच्चिनायि, बाध वच्चिंदि। దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేనా?

0: to the Gen Z. So I don't think it's working yet.
1: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उन उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप useless हो.
2: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
3: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
4: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
5: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
6: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
7: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
8: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
9: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: Launch control, 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
7: Your friends

0: BMP Basri Swaraj and also an FIR has been filed in Varanasi over the same skit. Vishwa Hindu Parishad strongly has condemned the skit, accusing the opposition of mocking a sacred national cause. Protests have erupted in multiple states. The VHP workers have also staged demonstrations and burnt his effigies. Now, there is Pappu Yadav who has hit back, saying that a person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do their hundreds of times to save. This is what he can go on doing again and again in order to save Sanatan. Meanwhile, Hyderabad Congress has replicated the same skit over Chanda Chori, and that happened yesterday.
1: और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है. मंदिर की रक्षा करना गलत है. मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है. देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है. गुड्डी में राम को उड़ाना सही है. चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे. जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे. जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं.
2: जिन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते. और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है. ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है. साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे.
0: Now, a year after the horrific Pehlgam terror attack that shocked the nation, Kashmir has once again witnessed a chilling act of targeted violence. This time, the victims were not tourists but migrant laborers from Chhattisgarh trying to earn a living hundreds of kilometers away from their home. Their families now allege that terrorists asked their religion before opening fire, echoing the pattern seen in the Pehlgam attack. Here are the details you need to know.
3: They had gone to Kashmir in search of work, to build homes, to feed their families, but became a victim of terror attack. In Kulgam, terrorists opened fire at a brick kiln, killing two migrant laborers from Chhattisgarh, Deepak and Bhupendra. Both had traveled to Kashmir with one dream: to earn enough to give their families a better life. But what has made this attack even more disturbing is what the families are alleging. Victim Deepak's brother says that the attackers first asked his religion before shooting him. The family claims the victims were identified before the bullets were fired.
4: जो आतंकियों ने उसको जाति समाज पूछ करके गोली मारी गई है. ये आतंकियों का कारनामा है. ये देखिए कि उसको जाति पूछ करके जा करके गोली मारी है.
3: In villages across Chhattisgarh, grief has replaced hope.
5: उसका एक 2 साल का छोटा सा बच्चा है और उसके पिताजी भी प्लान गए हुए हैं. उसके पिताजी बाहर में रहते हैं अलग जगह और ये जम्मू कश्मीर भी गए थे. अब एक चिराग था, कोई उम्मीद था और उसके बच्चे के लिए हम लोग शासन से यही मांग कर रहे हैं कि उसका पढ़ाई के लिए रहन सहन अपने अपने खर्चे से कराए.
3: The men who had left home carrying lunch boxes and dreams are now returning in coffins. The attack has revived painful memories of the Pehlgam massacre, where terrorists similarly singled out victims after asking about their religious identity. Today, the questions are hauntingly familiar. Has terror once again chosen identity as its target? And how many more families must pay the price for hatred they never chose? As security forces continue their manhunt, 2 homes in Chhattisgarh wait in silence. Bureau Report, NDTV.
0: And with that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. Stay with us.

0: track, be it the Asian Games, but more importantly for LA 28. If these girls and some of these boys are groomed properly, with the support from BFI, Ajay Singh and his team, I think Indian boxing can turn the corner. With Trisha Ghoshal, this is Borya Majumdar for Rev Sports in Glasgow.
1: How would you describe Naudu some of these entertainment?
2: This was my first Commonwealth Games and I won the gold medal, so I am feeling so proud, so amazing. And the journey till here was not easy, it was so difficult from the trials itself. I had trial with Nikhat Zareen, Meenakshi Uda, and many world champions were there in the trials. Then in the Commonwealth Games, also the Ruby White, the final opponent, was also very good. So I managed to play my natural game and defeat her.
1: पंच के बाद आप खुद ही हाथ पकड़ के सेलिब्रेट कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, वो क्या एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाह रहे थे?
2: हाँ जी, क्योंकि रूबी वाइट भी बहुत अच्छी बॉक्सर है, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी टक्कर की बाउट होने वाली है, लेकिन मतलब मैं तब भी तो स्कोर कर रही थी, तो मैं हाथ ऊपर कर रही थी दिखाने के लिए कि हाँ मैंने स्कोर किया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे आता है। हाँ जी, ऑडियंस मतलब स्टार्टिंग वाले डे से हम देख रहे हैं कि ऑडियंस जो है सिर्फ स्कॉटलैंड को सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि जो भी कोई ओपोनेंट जा रहा है उसको हर कंट्री को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है द क्राउड्स सपोर्ट। और हमारे इंडिया से फेडरेशन के लोग भी आए हैं और जो स्कॉटलैंड मेडियंस हैं वो भी आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, तो थैंक यू सो मच आने के लिए, हमारी बूस्ट करने के लिए एनर्जी को। मैं उनको यही बोल रही थी क्योंकि वो अभी बहुत यंग है, मैं उसको बोल रही थी कि अभी बहुत कैरियर है आगे, आपका गेम बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा करोगे, प्लीज रो मत।
3: Feeling very good, even proud also, because the sacrifice of all athletes' family, they are showing their result here only. Even our federation did very much for us, ISAI, TOPS, Khelo India. So I just want to say thanks to them, because all of their hard work, the result is here. एक्चुअली मेरा लास्ट के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ, तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माई नेशनल एंथम इन माई वेट कैटेगरी। सो दे ऑल आर जस्ट कमिंग आउट, एंड इवन आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग दैट इन 2016 आई जस्ट टोल्ड माई डैड that dad please allow me to play boxing, because in a year there are so many IITians comes out but Olympic medal is very rare, so yeah.
1: आप राजस्थान से हो, IIT के बाद किस लोटा और IIT का एक काफी अच्छा रिलेशन है, आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि क्या हार्डशिप आपको फेस करना पड़ा?
3: डिफ़िकल्ट तो था, बिकॉज कोटा में बॉक्सिंग एकेडमी मिलना थोड़ा ऐसा था हम लोगों के लिए, और फादर भी बहुत चाहते थे कि मैं बस IIT करूँ, बिकॉज दे थॉट कि मैं थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ उनका, बट मैं तो श्योर थी कि मुझे नहीं करनी IIT, मुझे तो गेम ही खेलना है। स्टार्टिंग में बास्केटबॉल खेलती थी, फिर फादर को मेरा पोटेंशियल पता था कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगी मैं बेस्ट करूँगी, तो ही टोल्ड मी कि ओके तुम्हें गेम करना है, सो गो चूज अ गेम वे यू कैन परफॉर्म सोलो, सो आई चूज बॉक्सिंग, एंड बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस ओनली आई चूज द बॉक्सिंग। एंड उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अकेडमी ढूंढने के लिए, और जो मेरे बॉक्सिंग के बेसिक कोच हैं उन्होंने यूट्यूब से मेरे लिए बॉक्सिंग सीखा, बिकॉज वो भी प्रॉपर बॉक्सिंग के कोच नहीं थे, बट पहले उन्होंने खुद ने सीखा फिर मुझे सिखाया, और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं राजस्थान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी जैसे ही फाइनल हुआ मैंने जाते ही पापा को कॉल किया, तो वो बोले कि मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली जिसने ना कि कोटा राजस्थान इंडिया नहीं उसने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है।
1: लास्ट टू क्वेश्चन, राजस्थान में काफ़ी सारे स्वादिष्ट खाने होते हैं, हाउ वुड यू वांट टू गो बैक एंड एंजॉय?
3: हाँ, सबसे पहले यही है कि जल्दी जल्दी फ्लाइट इंडिया लैंड हो और मैं जाके दाल बाटी खाऊँ, बिकॉज मैं बहुत टाइम से उसको मिस कर रही हूँ।
1: जी
3: थैंक यू।
1: That is like a personal championship nation, and we can see that you're doing well. So, how would you sum up this for your journey?
4: ये सभी कोचिज़ का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और हमारे कंट्री इंडिया, इस सभी की वजह से आज मैं सीनियर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया।
1: फाइनल के बारे में बताइए कि कमबैक भी करना पड़ा, क्राउड सपोर्ट काफी था, तो फाइनल का कैसे चल रहा था?
4: जी मैंने मेरी जो तीन बाउट हुई हैं तीनों बाउटों में मैंने कमबैक किया है, तो मुझे जैसे फर्स्ट अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे अगर फर्स्ट राउंड स्प्लिट में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मेंटलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कमबैक कर लिया था आराम से।
1: बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, फिजिकल स्पोर्ट है, बट मेंटल स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे देखते हैं?
4: जैसे जब हम बॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं तो फिजिकली होना पड़ता है, लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस समय फिजिकल की जगह मेंटलिटी बहुत ज़्यादा काम आती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी बॉक्सर को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
1: आज की क्राउड सपोर्ट के बारे में बताइए कैसा
4: था? क्राउड सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं।
1: कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे?
4: ये मेडल पूरे कंट्री को देना चाहती हूँ, और सभी आइए और सेलिब्रेट कीजिए।
5: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को, हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े एक कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है। जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पर जाना है पहले। मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को।
6: ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है, ये सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए। मैं मेडल लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और खेलूँ, अपने देश के लिए मेडल लाऊँ। मैं मोटिवेट होती हूँ मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है। मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ।
7: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके। और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है।
8: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड की और मेरे की फाइट खींची है, और थोड़ी चूक रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।
9: अपोनेंट काफी टफ लग रहा है, फाइट अभी काफी टफ।
8: हाँ, ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे वे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं हैं, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी, और अच्छा लगा मेरे को खेल के, मैंने अपना बेस्ट दिया।
10: Proud moment for our country, and it's proud moment for every Indians, and every boxers goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes, it's a, you cannot say in a one word, it is an exciting, it's a proud moment for us. I'm so happy that they have we had 38 medals, and out of that 13 gold medal and 17 silver, and then 38 medals, and this is very limited events here it is happened, you know, 10 events only, but our major events is outside, so maybe in the 2030 maybe we'll come down again, and this is a very very big achievement and great achievement from our athletes.
0: So if there's one man who must be chuffed, it's Ajay Singh, president of BFI. 7 gold medals and 6 all other sports combined, 13 in all, Ajay Singh's sport has contributed 7 and catapulted India to the 4th position. You must be over the moon.
11: We are absolutely delighted. And we are delighted that we were able to contribute to the country's kitty. I think one other really important thing for us is that with 7 golds and 3 silvers, this is the highest ever medal haul by any country in Commonwealth Games history.
0: Let's repeat this. 7 golds and 3 silvers, highest ever medal haul by any country in the history of the Commonwealth Games, and we are talking 1930 to 2026. Now that's incredible.
11: Incredible, incredible, and kudos to all our wonderful young players who played with such grit and determination.
0: But you know, a couple of those bouts, Sachin, for example, in the last 15 seconds, that punch, that standing 8 count, then Ankush coming back. I mean, unreal.
11: Absolutely. This is a turnaround team. It's a never give up team. And, you know, our boxers have learned that no matter what the adversity, they will fight till the last breath. And something to be incredibly proud of.
0: But Ajay ji, also 5 golds from the women, that's a statement to India, what our women can do. Empowerment, symbolism,

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा घर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
4: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज़ आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज़ दे ब्रेक। Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: Well, switching tracks to the Commonwealth Games, and India's boxing contingent has delivered a historic knockout performance. We're talking about 10 Indian boxers stepping into the finals, and they returned with an incredible 7 gold and 3 silver medals, making it India's most successful ever boxing campaign at the Commonwealth Games. Gold medals came through Preeti Pawar as well as Sakshi Chaudhary and Ankush Pangal, Sachin Sivash and also Nikhat Zareen. There were many, in fact, who have won, so 10 in all. From clinical dominance to gritty comeback wins, India's boxers own the ring, delivering one of the biggest highlights at the Games in Scotland and powering the nation's medal charge in spectacular fashion.
1: 7 gold medals, 3 silver medals, 10 finalists. That's India's final report card from boxing at the Commonwealth Games 2026. And quite simply, this is the greatest boxing campaign the country has ever produced at the Games. This campaign will always be remembered for something that's much, much bigger than individual medals. India won its first Commonwealth Games gold medal in boxing back in 2002. 24 years later, after years of federation troubles and administrative uncertainty, Indian boxing has produced its greatest, its best ever Commonwealth Games performance. Saturday produced 7 Commonwealth Games champions from boxing and one unforgettable outing, perhaps the clearest sign yet that Indian boxing is back where it belongs, among the world's best.
2: How does it feel to be a part of this?
3: I'm feeling very good, even proud also, because the sacrifice of all athletes' family, they are showing their result here only. Even our federation did very much for us, ISAI, TOPS, Khelo India. So I just want to say thanks to them, because all of their hard work, the result is here. Actually, मेरा last के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माई नेशनल एंथम इन माई वेट कैटेगरी.
4: Yes, we coach is का sport, family का sport और हमारे country India इस सभी की वजह से आज मैं senior में Commonwealth Games में gold medal आया.
2: Final के बारे में बताइए कि comeback भी करना पड़ा, crowd support काफी था, final का क्या चल रहा था?
4: हाँ जी, मैंने मेरी जो 3 fight bout हुई हैं, तीनों बाउटों में मैंने comeback किया है, तो मुझे जैसे first अभी तो बहुत ज़्यादा experience हो रहा है, जैसे अगर first round split में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मेंटलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कम बैक कर लिया था आराम से.
5: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को, हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े एक कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है. जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पे जाना है पहले. मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को.
6: सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है, ये सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए. मैं मेडल लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और खेलूँ, अपने देश के लिए मेडल लाऊँ. मैं मोटिवेट होती हूँ मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है. मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है, उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ.
7: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था. तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके, और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है.
8: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा. मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है, और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूँगा.
9: अपोनेंट काफी टफ लग रहा है, फाइट अभी काफी टफ।
8: हाँ, ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे वे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं है, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी और अच्छा लगा मेरे को खेल के, मैंने अपना बेस्ट दिया है।
10: Proud moment for our country, and it's proud moment for every Indians, and every boxers goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes, it's a, you cannot say in a one word, it is an exciting, it's a proud moment for us. I'm so happy that they have we had 38 medals and out of that 13 gold medal and 17 silver and then 38 medals, and this is very limited events here it is happened, you know, 10 events only, but our major events is outside, so maybe in the 2030 maybe we'll come down again, and this is a very very big achievement and great achievement from our athletes.
11: So if there's one man who must be chuffed, it's Ajay Singh, president of BFI. 7 gold medals and 6 all other sports combined, 13 in all. Ajay Singh's sport has contributed 7 and catapulted India to the 4th position. You must be over the moon.
12: We are absolutely delighted. And we are delighted that we were able to contribute to the country's kitty. I think one other really important thing for us is that with 7 golds and 3 silvers, this is the highest ever medal haul by any country in Commonwealth Games history.
11: Let's repeat this. 7 golds and 3 silvers, highest ever medal haul by any country in the history of the Commonwealth Games, and we are talking 1930 to 2026. Now that's incredible.
12: Incredible, incredible, and kudos to all our wonderful young players who played with such grit and determination.
0: And with that, it's a wrap on this edition. News and updates for country on the other side. Coming up next is Fault Line with my colleague Gauri Dwivedi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: से हम लोग कमाने के लिए आए हैं, पर बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है।
1: Hey, you can see these are the children and young men as well who are unemployed at this stage, and they have been working in some of the factories, and what we have got to learn that at this stage they are jobless and they have got no work, and for the last 20 to 30 days they have been completely unemployed. Right now we are at the Triveni Sangam. This is
2: right now we are at the Triveni Sangam. This is the trisectional point where merge into the Arabian Sea. Behind me you can see the visuals over here where Kharera River, apart from that Ambika River and Kaveri River, all these three rivers submerged into one, and then it basically meet into the Arabian Sea. You can see the visuals over here, which is very aggressive right now. The entire span in the entire area has been completely flooded. यहाँ से आप लोग लोगों को जो है स्थानांतरित कर रहे हैं, जो लोग रिवर बेड के इलाके में रहते हैं उनको दूर लेकर के जा रहे हैं, ऊंची जगहों पे लेके,
3: ऊंचे जगह पे लेके जा रहे हैं।
2: कितने लोगों को लेकर गए?
3: 250 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित कर रही है,
2: उनको सेफ लोकेशन पे
3: सेफ लोगों में भेज दिया। अभी
2: यहाँ पे तकरीबन कितनी आबादी रहती है?
3: बहुत ज्यादा है, 45,000 आबादी है बिल्लीमोरा नगर पालिका की।
2: IMD का जो अलर्ट है, रेड अलर्ट, वो जारी है। 34 जिलों में से तकरीबन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है रेड अलर्ट है, और 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर अब तक जो है नवसारी के अंदर ले जाया जा चुका?
4: अब तक ये दूसरी बार ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई हुई है, और अब तक जो स्थानांतरित किए हुए की बात की जाए तो अभी तक 9,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन की ओर से स्थानांतरित किया गया हुआ है। उनके लिए फूड पैकेट की भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। हालांकि ये बिल्लीमोरा के जो सटे हुए जो इलाके हैं, जो निचले क्षेत्र है, वहाँ के 4 से 5 गाँव है जो ये नदी में बाढ़ के कारण वो संपर्क उनका टूट चुका है।
5: Now, amid the Gen Z movement in the country, it's Prime Minister Modi who has once again underlined the importance of constructive youth engagement. He has said that the young population is the country's greatest strength and stresses that the youth must receive the right guidance to realize their full potential. Echoing a similar message was the National Security Advisor urging young people not to confuse freedom with liberty. He said that freedom carries responsibility and encouraged the youth to reflect on their role in nation building, place national interests above personal interests. Let's listen in.
6: आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत AI, डीप टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: प्योर मसाला।
9: What seems settled for me is un.

0: will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
1: And now, Aditya Raj Kaur.
2: Welcome back. Now, India's boxing contingent has delivered a historic knockout performance at the Commonwealth Games. 10 Indian boxers stepped into the finals and they returned with an incredible 7 gold and 3 silver medals, making the total tally to 10 and making it India's most successful ever boxing campaign at the Commonwealth Games. And of course, leading all of this was Preeti Pawar, Sakshi Chaudhary, and also Ankush Pangal and Sachin Sehwag and Nikhat Zareen. So this is, of course, from clinical dominance to gritty comeback. It is India's boxers owning the ring and delivering one of the biggest highlights of the games in Scotland and powering the nation's medal charge in spectacular fashion.
3: 7 gold medals, 3 silver medals, 10 finalists. That's India's final report card from boxing at the Commonwealth Games 2026. And quite simply, this is the greatest boxing campaign the country has ever produced at the Games. This campaign will always be remembered for something that's much, much bigger than individual medals. India won its first Commonwealth Games gold medal in boxing back in 2002. 24 years later, after years of federation troubles and administrative uncertainty, Indian boxing has produced its greatest, its best ever Commonwealth Games performance. Saturday produced 7 Commonwealth Games champions from boxing and one unforgettable outing. Perhaps the clearest sign yet that Indian boxing is back where it belongs, among the world's best.
4: How would you describe Nauru or some of these entertainment?
5: This was my first Commonwealth Games and I won the gold medal, so I am feeling so proud, so amazing. And the journey till here was not easy. It was so difficult from the trials itself. I had trial with Nikhat Zareen, Meenakshi Uddai, and many world champions were there in the trials. Then in the Commonwealth Games, also the Ruby White, the final opponent, was also very good. So I managed to play my natural game and defeat her.
4: पंच के बाद आप खुद ही हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। ओके, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाह रहे थे।
5: हाँ जी, क्योंकि रूबी वाइट भी बहुत अच्छी बॉक्सर है, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी टक्कर की बाउट होने वाली है, लेकिन मतलब मैं तब भी तो स्कोर कर रही थी, तो मैं हाथ ऊपर कर रही थी दिखाने के लिए कि हाँ मैंने स्कोर किया है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे आता है।
6: I'm feeling very good, even proud also, because the sacrifice of all athletes' family, they are showing their result here only. Even our federation did very much for us, ISAI, TOPS, Khelo India. So I just want to say thanks to them, because all of their hard work, the result is here. एक्चुअली मेरा लास्ट के 2024 थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और 2025 में मेरा सर्जरी हुआ, तो मैं हंगर था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वेयर आई गेट द चांस टू प्ले माई नेशनल एंथम इन माई वेट कैटेगरी.
4: That is like a personal from championships in Asia and the CWG medal. So how would you sum up this for you?
7: Yes, we coaches का sport, family का sport और हमारे country India, इस सभी की वजह से आज मैं senior में Commonwealth Games में gold medal आया.
4: Final के बारे में बताइए कि comeback भी करना पड़ा, crowd support काफी था, तो final का कैसे चल रहा था?
7: हाँ जी, मैंने मेरी जो 3 bout हुई हैं, तीनों bouts में मैंने comeback किया है, तो मुझे जैसे first अभी तो बहुत ज़्यादा experience हो रहा है, जैसे अगर first round split में चला जाता है तो कूल माइंड से रह के मेंटलिटी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कम बैक कर लिया था आराम से.
8: अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को, हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है. जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पे जाना है पहले. मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को.
9: सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है ये.

0: सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए। मैं मेडल लूं या ना लूं ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं और खेलूं, अपने देश के लिए मेडल लाऊं। मैं मोटिवेट होती हूं मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूं, तो मैं देखती हूं कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है। मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था। तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके, और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है।
2: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।
3: अपोनेंट काफी टफ लग रहा है, फाइट अभी काफी टफ।
2: हाँ, ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे वे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं हैं, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी और अच्छा लगा मेरे को खेल के, मैंने अपना बेस्ट दिया है।
4: Proud moment for our country and it's proud moment for every Indians and every boxers goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes, it's a, you cannot say in a one word, it is an exciting, it's a proud moment for us. I'm so happy that they have we had 38 medals and out of that 13 gold medal and 17 silver and then 38 medals, and this is very limited events here it is happened, you know, 10 events only, but our major events is outside, so maybe in the 2030 maybe we'll come down again, and this is a very very big achievement and great achievement from our athletes.
5: So if there's one man who must be chuffed, it's Ajay Singh, president of BFI. 7 gold medals and 6 all other sports combined, 13 in all, Ajay Singh sport has contributed 7 and catapulted India to the 4th position. You must be over the moon.
6: We are absolutely delighted, and we are delighted that we were able to contribute to the country's kitty. I think one other really important thing for us is that with 7 golds and 3 silvers, this is the highest ever medal haul by any country in Commonwealth Games history.
5: Let's repeat this. 7 golds and 3 silvers, highest ever medal haul by any country in the history of the Commonwealth Games, and we're talking 1930 to 2026. Now that's incredible.
6: Incredible, incredible, and kudos to all our wonderful young players who played with such grit and determination.
7: Let's just get you more news coming our way. In fact, when we talk about the very latest, and this is in regard to, in fact, let's talk about the athletics, and that is Rana, who won the men's F57 para shot, put gold with a season best effort of 13.4 meters. This is leading an Indian 1-2, as of course we also had Shubham Joyal there claiming silver with 13.28 meters. India bagging a golden 1-2 in the parashot put at the Commonwealth Games.
8: भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में तहलका मचा दिया है, और खासकर जो पैरा स्पोर्ट्स है, पैरा एथलीटों ने, उन्होंने कमाल का काम किया। और सुमन, आपसे शुरू करते हैं राणा, कि आपकी वीडियो हमने देखी है, कैसे आप माइंस में, पुंछ में आपका माइंस में आपका पांव चला गया था, और उसके बाद यहाँ आके आज मैंने देखा जब आप फ्लैग ऊपर जा रहा था तो आप पहली बार मुझे थोड़ा इमोशनल लगे, बहुत अच्छा सफर रहा ये।
9: जी सर, बहुत खुश लग रहा है, इतना बड़े मंच पर इंडिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने का टाइम मिल रहा है, और देश के लिए और PCI SAI सभी को मतलब मेडल देने का मौका मिल रहा है, इसमें बहुत खुश लग रहा है।
8: शुभम, आपकी भी कहानी शानदार, आप SSB का इंटरव्यू देने जा रहे थे और वहां से मेडल तक, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए, और कितना आपके लिए आपका लिए कौन इंस्पिरेशन रहा? आप तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए।
10: सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले 1 अगस्त 2022 को मेरा अब अपनी एम्पिटेशन हुआ था, एंड उस समय मैं आर्मी में था, आर्मी में अभी भी हूँ, मैं आर्मी कैडेट कॉलेज का मैंने एग्जाम दिया था, मैं रिटर्न मैंने क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू जस्ट मेरा एक हफ्ते बाद था एंड उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उस समय मुझे बहुत ही होपलेस और एमलेस फील हो रहा था, बट मुझे मैंने ये नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 4 साल बाद मैं कॉमनवेल्थ खेल रहा हूँ एंड नॉट इवन खेल रहा हूँ बट मेडल भी लेके दूंगा देश के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था।
8: राकेश जी, इन दोनों को तैयार करना और जो आम प्लेयर को तैयार करने में आपको क्या लगता है किसको ज्यादा मुश्किल है, जो खासकर इन जैसे प्लेयर्स को आप जब तैयार करते हैं?
11: हाँ सर, इन लोग का मुश्किल तो नहीं है सर, बेसिकली ये लोग आर्मी वाले हैं मेन, तो पहले अंदर से पैसे वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनपे थोड़ा सा काम करने में इन्होंने रिजल्ट दिया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं इनके ऊपर, ये वैसे ही मोटिवेटेड बहुत है, तो इनपे थोड़ा काम किया हमने और सक्सेस हुए।
8: क्या बात है, और ये सब कितना मोटिवेट करते हैं। सच्चा सर, आपने एक बहुत खास बात है, मैं पिछले 10-15 साल से देखता हूँ, आप जिस प्लेयर के बारे में बोलते हैं मेडल मिलेगा तो उसको मेडल मिलता है, और आपकी बात मैं ऑफिस में करता हूँ तो ऑफिस को लगता है कि जैसे मुझे बहुत जानकारी है, मेरे जो दोस्तों को लगता है, जबकि क्या अभी और कितना, आपने 3 गोल्ड बोला था जाने से पहले, 3 तो हो गए, और एक्सपेक्ट करें?
12: टीम में कोई भी एथलीट को मैं एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली भी देखता है, उसका क्या दम है, उसका सब कुछ मेरे को थोड़ा सा पता चलता है। सी मैं खुद इंटरनेशनल एथलीट था, वो मेरे को पता चलता है ये एथलीट का इतना दम है। मेरा साथ राकेश जी था, हम भट्ट को दोनों इस ये दोनों का इवेंट का टाइम में भी हम देख रहा था, ये एथलीट का कोर इतना अच्छा है, ये इतना फेंक सकता है, इतना इसका कोर नहीं है, इतना ही फेंक सकता है। मैं वो दूसरा खिलाड़ी का भी मैं एनालिसिस करके बोलता था, एंड अगेन ये दोनों सुमन और राणा दोनों अच्छा प्रैक्टिस किया है। शुभम हमारे को कोई भी किसी को भी मेडल आया तो गोल्ड एंड सिल्वर ही सोच रहा था। इस टाइम में आप लोग को एक बोलना चाहता है, आज डिफेंस को बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहता है, ये आर्मी नोड खोल दिया अराउंड 5-6 years बिफोर, अभी मेरा एथलीट को सबको फैसिलिटीज मिल रहा है। ये आर्मी नोड खोलने से वॉर वाउंडेड इवन ट्रेनिंग वाउंडेड वो लोग को हेल्प हो रहा है, एंड ये लोग को इतना ही सुविधा भी मिल रहा है। सुविधा मिलने से बहुत खिलाड़ी लोग, बहुत लोग अभी हमारे आर्मी में बहुत लोग डिसअपॉइंटेड है, वो लोग भी अभी खेल में आ सकता है ये दोनों को देख के, इसलिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और एक टाइम
7: In very tragic news, renowned climber Nirmal Purja is amongst the 10 people killed in a devastating avalanche on Pakistan's Broad Peak. His death has sent shockwaves across the country. This is with global, the mountaineering community particularly, which is now mourning the death of the 43-year-old.

0: इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को। हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है। जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पे जाना है। पहले मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को, इंडिया को।
1: ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है, ये सबसे बड़ी जीत है कि इंडिया जीतना चाहिए। मैं मेडल लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कि इंडिया मेडल ले रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और खेलूँ, अपने देश के लिए मेडल लाऊँ। मैं मोटिवेट होती हूँ मेरे जूनियर से, वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे अपने देश के लिए और मेडल लाना है। मैं ये मेडल हमारे जो फ्लड में बहुत सारे लोगों को जान गया है, उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ।
2: अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था। तो ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके, और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है।
3: थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है, और थोड़ी चुप रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूंगा।
4: अपोनेंट काफी टफ लग रहा है, फाइट अभी काफी टफ।
3: हाँ, ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे वे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं हैं, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी और अच्छा लगा मेरे को खेल के, मैंने अपना बेस्ट दिया है।
5: All right, so those were the medal winners. Let's listen into some more reactions coming in. The IOA president, PT Usha, as well as the boxing president.
6: It's a proud moment for our country, and it's a proud moment for every Indians. And every boxer goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes, you cannot say in one word. It is an exciting, it's a proud moment for us. I'm so happy that we had 38 medals, and out of that 13 gold medal and 17 silver, and then 38 medals. And this is very limited events here it is happened, 10 events only, but our major events is outside. So maybe in the 2030 maybe we'll come down again, and this is a very very big achievement and great achievement from our athletes.
7: So if there's one man who must be chuffed, it's Ajay Singh, president of BFI. 7 gold medals and 6 all other sports combined, 13 in all. Ajay Singh's sport has contributed 7 and catapulted India to the 4th position. You must be over the moon.
8: We are absolutely delighted. And we are delighted that we were able to contribute to the country's kitty. I think one other really important thing for us is that with 7 golds and 3 silvers, this is the highest ever medal haul by any country in Commonwealth Games history.
7: Let's repeat this. 7 golds and 3 silvers, highest ever medal haul by any country in the history of the Commonwealth Games, and we are talking 1930 to 2026. Now that's incredible.
8: Incredible, incredible, and kudos to all our wonderful young players who played with such grit and determination.
5: And India bags a golden 1-2 in para shot put at the Commonwealth Games. Soman Rana clinched the gold with a season best throw, while Shubham Jiyal secured the silver. NDTV's Vimal Mohan spoke to the 2 medal winners.
9: भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में तहलका मचा दिया है, और खासकर जो पैरा स्पोर्ट्स है, पैरा एथलीटों ने, उन्होंने कमाल का काम किया। और सुमन, आपसे शुरू करते हैं राणा, कि आपकी वीडियो हमने देखी है, कैसे आप माइंस में, पुंछ में आपका माइंस में आपका पांव चला गया था, और उसके बाद यहाँ आके आज मैंने देखा जब आप फ्लैग ऊपर जा रहा था, तो आप पहली बार मुझे थोड़ा इमोशनल लगे, बहुत अच्छा सफर रहा ये।
10: जी सर, बहुत खुश लग रहा है, इतना बड़े मंच पर इंडिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने का टाइम मिल रहा है, और देश के लिए और PCI SAI सभी को मतलब मेडल देने का मौका मिल रहा है, इसमें बहुत खुश लग रहा है।
9: शुभम, आपकी भी कहानी शानदार, आप SSB का इंटरव्यू देने जा रहे थे और वहां से मेडल तक।
11: मैंने ये नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 4 साल बाद मैं कॉमनवेल्थ खेल रहा हूँ, एंड नॉट इवन खेल रहा हूँ बट मेडल भी लेके दूंगा देश के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था।
9: राकेश जी, इन दोनों को तैयार करना और जो आम प्लेयर को तैयार करने में आपको क्या

0: लगता है किसको ज्यादा मुश्किल है?
1: हाँ सर, इन लोग का मुश्किल तो नहीं है सर, बेसिकली ये लोग आर्मी वाले हैं मेन, तो पहले अंदर से पैसे वैसे बहुत स्ट्रोंग है, तो इनपे थोड़ा सा काम करने में इन्होंने रिजल्ट दिया।
0: सच्चा सर, आप में एक बहुत खास बात है, मैं पिछले 10-15 साल से देखता हूँ, आप जिस प्लेयर के बारे में बोलते हैं मेडल मिलेगा तो उसको मेडल मिलता है।
2: कोई भी एथलीट को मैं एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली भी देखता है, उसका क्या दम है, उसका सब कुछ मेरे को थोड़ा सा पता चलता है। से मैं खुद इंटरनेशनल एथलीट था, वो मेरे को पता चलता है ये एथलीट का इतना दम है। मेरा साथ राकेश जी था, हम भट्ट को दोनों इस ये दोनों का इवेंट का टाइम में भी हम देख रहा था, ये एथलीट का कोर इतना अच्छा है, ये इतना फेंक सकता है, इतना इसका कोर नहीं है, इतना ही फेंक सकता है। मैं वो दूसरा खिलाड़ी का भी मैं एनालिसिस करके बोलता था।
3: All right, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Do stay tuned. Flood Fury batters

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा।

0: because he wants to know the feelings of the people, of every section of the people. But this government says that we are not interested, all party meeting will not give good result. Because they are afraid that they will be get exposed. If the all party meeting is conducted, all the parties will point out the mistakes done by Vijay, which they are afraid of.
1: All right, so the DMK, they're targeting a Tamil Nadu chief minister over the Mekadatu issue as well as the Kaveri water. Remember, both sides, this has become a politically very hot issue with the opposition targeting, in Karnataka, you have the BJP targeting the Karnataka government, the Congress government there. And in Tamil Nadu, you have the DMK hitting out at Chief Minister Vijay, and this time saying the reason that Vijay is not calling for an all-party meeting is because his shortcomings, his wrongs will then be exposed. On the other hand, Karnataka BJP President Vijendra writing to the Tamil Nadu Chief Minister regarding the same Kaveri water issue, saying that we must resolve these matters. I'm reminded of the long-standing issue surrounding the Thiruvallavur statue in Bengaluru, which was eventually resolved through statesmanship, is what he is reaching out and trying to reach out to the Tamil Nadu Chief Minister, saying these issues need to be resolved. But on the other hand, the DMK claiming that the reason Chief Minister Vijay is not calling for that all-party meeting is that his shortcomings, his failures will be exposed, and that is the reason that he is not calling for an all-party meeting on this very, very contentious issue. Let's go across to Ritu now for more. And Ritu, while the DMK attacks Tamil Nadu Chief Minister Vijay, on the other hand, the BJP in Karnataka writing to the Chief Minister.
2: Well, of course, you see, as you pointed out, we've been seeing how that the political war of worlds have erupted between Tamil Nadu as well as Karnataka when we speak about the Kaveri water sharing issue, which has always been a debatable topic between both these states politically as well and in a legal aspect too. You see, of course, even as the DMK is all out to attack Chief Minister Vijay, Tamil Nadu Chief Minister Vijay, there here in Karnataka, you have the BJP state president D.Y. Vijendra writing a letter directly to that of Tamil Nadu Chief Minister regarding this whole matter, asking him to come with an open mind. But meanwhile, let me just also give you up this update that, Karnataka Chief Minister G.K. Shukumar has called for an all-party meeting regarding this Kaveri water sharing matter. And there you can see, behind me, all the leaders have apparently started arriving here at Krishna, which is the official residence office of G.K. Shukumar. A lot of, movement that we are seeing here, some BJP leaders are coming over here. The former chief ministers of Karnataka are also gathering right here at the CM president's office to discuss this whole matter. So yes, here in Karnataka, we are seeing that united front being put by BJP, by the Congress for that matter. And it should be seen whether we will be seeing Union Minister H.D. Kumaraswamy also coming to attend this meeting. That needs to be seen. But yes, meanwhile, in Karnataka, crucial all-party meeting will begin in few minutes now. Back to you.
1: All right, Ritu, thanks so much for joining us with those details. So once again, a political hot potato, the Kaveri issue, always a lot of emotions tied into this issue. So as we report on the Kaveri row, it's only intensifying. Now, three big developments have taken place. Remember, this is a very emotive issue between Tamil Nadu and Karnataka. Stalin has now moved the top court. Janayagan faces a halt in Karnataka, and D.K. Shivkumar called for that all-party meeting. The Karnataka chief minister says the final call on water release will come after consultations. Kaveri pressure mounts as the release order demands Karnataka release 3,500 cusecs daily for 15 days. Remember, this is crucial for Tamil Nadu farmers, but it's also something that benefits Karnataka farmers if the water is kept back. Well, let's just go across to where the Prime Minister is launching an anti-drug campaign. It's a 100-week campaign which is aimed at the youth of the country.
3: आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा सम्माननीय महंत पूज्य आचार्यगण पूज्य स्वामीगण पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित हैं साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं
4: माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की, जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आएं और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है, अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से एक साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे।

0: ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके, और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्मविहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है, 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है, और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा, और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संत गण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं।
2: युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है।
3: नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलांग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में

0: 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 60,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
2: ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बनें।

0: पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक।
1: ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है।
2: ए राहुल,
3: ए राहुल, सुनना,
2: रुकने यार, कहाँ आज फिर से लाइब्रेरी?
4: हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना।
3: ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुन, सुनना सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना।
4: अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता।
2: अबे थोड़ी देर यार, थोड़ी देर, बढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी।
3: एग्जैक्टली,
2: तो एंजॉय कर ले।
4: और सपने
2: देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार।
4: अरे मैं नहीं जाऊंगा यार।
5: बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार।
0: देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ।
4: लेकिन तुम हो कौन?
0: नशा,
5: नशा, नशा,
0: जिसे दुनिया कूल कहती है।
5: कूल, कूल,
0: जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं।
5: स्टेटस, स्टेटस,
0: जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं।
5: आजादी, आजादी,
0: और बाद में मैं बन जाता हूँ लत,
5: लत, लत।
0: और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी,
5: पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी।
3: ए राहुल, ये वेब पकड़, रील बनाएंगे।
2: सामने सामने सामने शूट कर।
3: भाई भाई भाई भाई भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए।
2: स्वैग आएगा, 1000 likes आएंगे यार।
3: जोर शॉट, जोर शॉट,
2: 1 million।
4: अरे भाई, मुझे नहीं करना है।
2: अबे डरता है,
3: इतने सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे, संभाल लेंगे ना।
4: भाई नहीं कर रहा मुझे।
3: अरे तू दोस्त है ना मेरा, तुझे दोस्ती की कसम।
2: कश,
1: याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता, हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता।
0: क्यों, कैसा लग रहा है?
4: अजीब लेकिन अच्छा लग रहा है।
0: वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता।
0: अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा।
4: मतलब?
0: अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा।

0: कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है।
1: मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त।
0: जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ, कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस।
1: फीस? कोई फीस फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए इसी वक्त।
0: भैया, पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए।
2: जरा सोच, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए।
0: बेटा बेटा, याद है तुझे जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था, माँ फूंक मार दे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं, तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है।
3: देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था, जो भी किया इसने खुद किया।
4: यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है।
1: माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, माँ।
0: हाँ बेटा, मैं यही हूँ।
1: माँ मुझे बचा लो, माँ मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ। माँ,
0: हाँ बेटा, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से।
2: हाँ बेटा,

0: I'd say we're decoding today the most confusing yet exciting pivot in Samsung's history. In this hand is the Galaxy Z Fold 8, short, wide, and finely designed for human hands. And in this hand, the Z Fold 8 Ultra, a spec monster that refuses to let go of the past. I've spent a few days with both, even after I came back from my travels, shooting, typing, multitasking. One of these is a game changer, and the other, maybe not there yet. Let's start with the standard Fold 8. For years, we've complained. We've all complained about that narrow candy bar cover screen on these devices, on the previous Fold series as well. You know the struggle. Fat fingering typos, feeling like you're typing on a TV remote. Well, Samsung finally listened. This is the passport form factor we've all been waiting for. It's shorter and it's wider, and honestly, it's a relief. Using this closed feels like you're using a regular iPhone or a Pixel device. My thumbs aren't fighting for space, and when you open it, you get a canvas that actually makes sense for media consumption. I've watched a bunch of shows already on this right here on the road. The black bars are thinner. You're using more of the screen real estate. It's practical. It's the foldable for people who actually want a phone first and maybe a tablet second. But here's the real rub. To get this form factor, you're sacrificing the zoom. No dedicated telephoto lens here, just a main and an ultra wide. For 1,80,000, that is a tough pill to swallow. You are paying premium prices for mid-range camera features. Now, let's talk about the Ultra. Now, this year there's been a bit of a nomenclature change at Samsung. They're calling this the Ultra. And I think it might be a precursor to what's coming from Apple Park soon. But if you love the tall, narrow feel of the Fold 7, this is for you. But look closely, it is incredibly thin, 8.9 mm folded. Even if you compare it to last year's, it makes a huge difference. That's thinner than some standard slab phones. It's built with flex titanium, and yes, the crease is basically gone, but it's still an ergonomic nightmare for one-handed use. It's tall, it's top heavy, and while that 8-inch inner screen is massive for Excel sheets and split-screen multitasking, which runs like a dream on the Snapdragon 8 LE Gen 5, by the way, it feels more like a piece of office equipment than a daily driver. You're buying this for one reason: the cameras, and they've gotten much better. We finally have a 200 megapixel main sensor, 3x optical zoom on a foldable. This was already Fold 7, the Fold.
1: मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन, करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तैयार किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है, लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है।

देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे, उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है, आपको ध्यान रखना है। ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है।

लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लोक कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितू पीतई मती दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराया न पिछाणे, खस बहू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है, ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं, आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए।
उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, हजारों करोड़ रुपये की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं, मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं। आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है, पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे। दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं भाई भारत के वॉलेंटियर्स की बधाई करता हूं, वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माई भारत के वॉलेंटियर्स को मिलने का मौका मिला, वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता है, जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं, वहां जाकर के आए। उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलेंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर्टियर मसाला।
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
10: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
9: आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: 1.5 महीने पे।
9: आपकी फैमिली है?
10: कौन?
9: बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
11: व्हाट सीम्स सेटल्ड for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% Sudi se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
12: This location from Tel Aviv
2: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
13: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
14: The Ayatollah Khamenei is gone.
15: There has been a missile attack right behind me,
16: and we need to rush into a shelter.
17: Heading there.
18: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
19: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
20: Really?
19: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
4: वेट सिद्धार्थ सर, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
1: ऐसे आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: व्हाट सीम्स सेटल्ड For me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me.

0: arguing protests alone cannot solve the dispute. Instead, he has called for an all-party consensus. He's also proposed postponing a planned meeting with Tamil Nadu Chief Minister Vijay until tempers cool. But he insists dialogue remains the best path forward.
1: My legal team and my officers have done their best, but at the same time, I'll have to take my opposition party leaders' advice. I'm waiting for their decision.
2: We know that we respect the law of this country. We know the water position. We'll try to inform them this local status, and we will have a meeting in a better cordial situation.
3: Message to organization, sir.
2: For I appeal to all the organizations, let us not have any bunk. Let us be peace. This is a peace loving state. Let us protect everyone's life.
0: The Kaveri has witnessed disputes for generations, but climate change, unpredictable monsoons, and rising water demand are making an old conflict even more difficult. For Karnataka, the challenge is balancing three competing priorities: protecting farmers, ensuring drinking water, and complying with legal obligations. Coming days will be crucial. An all-party meeting, legal consultations, further rainfall, and perhaps fresh dialogue with Tamil Nadu. Until then, every drop of Kaveri water remains at the center of one of India's longest-running river disputes.
4: स्वस्थ नागरिक ही विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच के साथ हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आधुनिक अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से इलाज अब लोगों के और करीब पहुंचा है।
5: पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में ही विचार किया गया आयुष्मान भारत, और हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना ये हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है।
4: आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुरक्षा मिली है। वहीं बच्चों, माताओं और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में लाखों बच्चों की स्वास्थ्य जांच और उपचार सुनिश्चित किया गया है।
6: इसको लेके हम बार हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट में 60-70 हजार रुपए खर्चा उन्होंने बता दिया, तो आयुष्मान कार्ड से यहाँ गए, जच्चा बच्चा हमारे दोनों ठीक है और बहुत अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं हमने, और सारी स्कीमें बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं ये।
4: रोकथाम, जांच और उपचार, तीनों स्तरों पर हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन।
3: Watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
2: When stories have impact.
4: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
2: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
3: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: Theft of devotees cannot be treated as a crime. While Shiv Sena UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified and accusing the BJP of using FIRs to silence the political opponents. They have said that the actual Chanda Chori has hurt Hindu sentiments instead. Lots of political reactions coming in on that story.
1: Ghatiya, ghinauna aur apradhik krit tha. Santon ka apman karna, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिम्पल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
2: द रिपल्सिव ड्रामा एनेक्टेड बाय राहुल गांधी एंड हिज कोटरी इन द पार्लियामेंट प्रीसिंक्ट्स हैव ग्रीवियसली demean the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu dharma.
3: भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए.
4: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था. बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता, ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है.
5: राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की. 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में. 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है? शर्म नहीं आती लोगों को?
6: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है. देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया. आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता. और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना इनका जवाब राम जी देंगे इनको.
7: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई. भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई. चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया. जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो भावनाएं वहाँ आहत होती है. और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा. कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के.
8: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते. ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते. और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
0: And from leading Mumbai's neat paper leak protest to becoming the face of a nationwide movement, Ria Aahir's journey is making headlines. The model and entrepreneur whose dramatic stand in front of a police van went viral has now been felicitated by MNS Chief Raj Thackeray for her courage. NCP SP MP Supriya Sule has also extended her support after Aahir alleged that she was subjected to online abuse and threats, prompting her to approach the Maharashtra cyber cell. So that's making headlines in Maharashtra. Moving on, let's tell you what's happening in the state of West Bengal. Well, a sensational FIR has uncovered an alleged Jaish-e-Mohammed-linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, they targeted VIPs and even plotted attacks and potential and political assassinations. NDTV has accessed the FIR. There are two arrests that were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and the prime accused Hamim, alias Hamim Fiogo, was arrested in Bardhaman in West Bengal. Now, the investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers that were linked to Pakistan. The United States, the United Kingdom and even Mexico are now under scrutiny. The FIR also names Hamim Mondal, alias Hamim Fiogo, alleging that he ran an espionage network. He received instructions from Pakistan and that he maintained several foreign-linked WhatsApp connections as well. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations. They recruited locals and even planned the kidnappings, murders and other crimes as well. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as a part of a larger conspiracy to assassinate the West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. Investigators are also alleging that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protest at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
9: देखिए जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
10: Arrest of suspected terrorist Hamim Mondal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Hamim Mondal and his elderly father used to running a hushyari business that would be given to told that the government business used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused the owner of this place, Hamim Mondal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a government factory, but what we do not know whether it was a shield behind the entire plot. Police has already arrested Hamim Mondal and his close associate, his girlfriend from Jharkhand. Now this investigation led investigator to this particular place, which is located in Howrah, and many plot is been busted by the investigating team.
0: Let's now tell you about the monsoon that has wreaked havoc in many states. Relentless monsoon rains have triggered severe waterlogging and flood-like conditions across parts of Gujarat, disrupting normal life in Navsari, Bharuch and even Surat. Roads have been submerged, traffic movement has been severely affected and low-lying areas remain inundated as relentless rainfall continues. From Navsari to Morbi, the flood situation in Gujarat remains grim. Rising waters have entered homes, forcing residents to wade through the flooded streets. In Nadiad, submerged roads and waterlogged markets have brought daily life to a standstill.

0: Here's a report that's been filed by my colleague Akhil.
1: We are at the Triveni Sangam. This is the trisectional point where three rivers conjoined and then merged into the Arabian Sea. Behind me, you can see the visuals over here where Kharera River, apart from that Ambika River and Kaveri River, all these three rivers submerged into one and then it basically meet into the Arabian Sea. You can see the visuals over here, which is very aggressive right now. The entire span in the entire area has been completely flooded. यहाँ से आप लोग लोगों को जो है स्थानांतरित कर रहे हैं, जो लोग रिवर बेड के इलाके में रहते हैं उनको दूर लेकर के जा रहे हैं, ऊंची जगहों पे लेके,
2: ऊंची जगह पर लेके जा रहे हैं।
1: कितने लोगों को लेकर गए हैं?
2: 250 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित कर रही है,
1: उनको सेफ लोकेशन पे
2: भेज दिया। अभी
1: यहाँ पर तकरीबन कितनी आबादी रहती है?
2: बहुत ज्यादा है, 45,000 आबादी है बिल्लीमोरा नगर पालिका की।
1: आई एम एट कस्बा विलेज। दिस इज वन ऑफ द विलेजेस ऑफ नौसारी डिस्ट्रिक्ट एंड दिस वेरी रोड कनेक्ट्स नौसारी टू सूरत। राइट नाउ यू कैन सी द विजुअल्स ओवर हियर, द वाटर करंट कैन बी सीन and the impact and the magnitude of the water can also be seen. Right now you can see from this very side, from the side of Nawsari, a tractor is just moving towards the side of Surat. The entire road has been blocked, the entire road has been choked, and what we have got to learn from the locals present over here that at this stage it's very difficult to cross this terrain. I'm going to speak to this tractor driver over here, and right now you can see the impact of this waterway. This has become a waterway. I am going to request this very individual. कहाँ जा रहे हैं आप इसका? कहाँ जा रहे हैं?
3: वो छोड़ने गए थे साफ करने के लिए।
1: लोगों को छोड़ने के लिए गए थे। पूरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है। Right now I have rented a tractor to show you, to bring you the reality of the ground zero's water current level is so intense. At this stage what we are witnessing that not only this very village, apart from that there are 24 to 25 villages which have got badly impacted, and due to which what we are witnessing that there's a scarcity of food, drinking water, and people are facing a lot of difficulties. I am at the bank of Tapi River. This is the very river where Surat city is situated, and behind me you can see the visuals over here. This bridge is known as Causeway Bridge. The danger level mark of this bridge is 6 meters, but right now it's the water is flowing above the danger level mark, which is approximately 8 meters up to the height right now. And if you see, the bridge is completely submerged into this very deep water. And what we have got to learn that so far, two teams of SDRF have been deployed. One team of NDRF has been deployed, and one team of the Indian Army has also been deployed. More than 48 hours, it's continuously raining over here in Surat, which has basically inundated the entire Diamond City. I have encountered a boy whose name is Viral. He's a 10-year-old boy. I'm going to speak to him to get to know his story. He's a very ambitious boy. He wants to become an engineer, but the conditions with which he had encountered in his life are very crucial. I'm going to get his version only. Viral, ye bataiye ki बरसात का मौसम है, लगातार जो है आप लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। नौसारी के कोस्टल रीजन में आप लोग रहते हैं, हमेशा बाढ़ आती है और हमेशा परेशानी होती है। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़िंदगी बसर करना?
4: बहुत मुश्किल है, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पानी भी इधर बहुत भरा रहा है, और निकलना भी कुछ मुश्किल होता है इधर।
1: आप जब अकेले में बैठते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं?
4: भगवान को ऐसा कह रहे हैं कि पानी मत आने देना।
1: पानी नहीं आने देना?
4: हाँ।
1: तकलीफ होती होगी आपको, दूसरे बच्चों को देखते होंगे तो?
4: हाँ।
1: जिला प्रशासन से कोई आह्वान, कुछ कहना चाहते हो? गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हो?
4: कुछ कहना नहीं चाहता।
1: क्यों, आपको उम्मीद नहीं है प्रशासन से, सरकार से? क्या हुआ, रोने लगे आप? अरे यू आर अ वेरी स्ट्रांग बॉय। क्या आंसू आ गया आपकी आंखों से? क्या हो गया, आपको उम्मीद नहीं है? लोगों से उम्मीद नहीं है, सरकार से उम्मीद नहीं है कि कुछ कर देगी, कुछ भला हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा?
4: सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा घर बना देना।
1: आप बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हो? मत रो, यू वेरी स्ट्रांग बॉय, नहीं रोते हैं, ठीक है? आप एक दिन बहुत, आप देखो आपके घर में मैं अभी आया हूँ तो मुझे नज़र पड़ी है, यहाँ पे मेडल्स भी हैं। ये आपके मेडल्स हैं?
4: हाँ।
1: तो आप मेहनती बच्चे हो, इसका मतलब इसलिए आपको मिले हैं ये मेडल्स, है ना?
4: हाँ।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?

0: With me is Mirabai Chanu, the gold medalist from Commonwealth Games in Glasgow. She has just come back to India, and with her, her super coach, Vijay Shekhar Sharma. Meera, many, many, many congratulations. You know, I have been congratulating you from probably the silver medal in Olympic Games and even before. Tell us, ye jo medal tha, career ka sabse difficult tha?
1: Difficult to nahi tha, par ye medal mere liye bahut important thi. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सबसे पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए मैंने दिया है. और एक प्लेयर्स सबको चाहते हैं कि गेम्स में जाके मेडल जीतना, और ये मेरा थ्री गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ.
0: अगर तीनों कंपेयर करें तो इसको कहाँ आप, वेयर विल यू प्लेस दिस?
1: मैं ये टॉप में ही रखना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने परफॉर्मेंस इतना तो नहीं दिया है, फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी, दिल से खुशी, और मैं बहुत प्राउड फील किया था कि मैं इंडिया के लिए मतलब मैंने कुछ करके दिखाया है.
0: विजय सर, 15 साल, फॉर 15 ईयर्स यू हैव वर्क्ड विद मीरा, ये जो स्टेज ऑफ हर करियर, इसको मैनेज करना आपके लिए एज अ कोच कितना डिफिकल्ट है?
2: जितना जैसे जैसे आप प्लेयर के साथ टाइम जितना ज़्यादा व्यतीत करते जाते हैं तो उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है. तो आपका जो मतलब काम, नए बच्चे के साथ काम करना और मीरा के साथ काम करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मैं मीरा को कहता हूँ कि इसने मेरी आदत ख़राब कर दी है. नए इसको एक बात इशारे से बताने से समझ में आ जाती है, नए बच्चे को वही बात 8 बार 10 बार बतानी पड़ती है.
0: तो
2: नहीं, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, इसकी अपनी पर्सनल मेहनत है. आप ये देखें कि 2014 में इसने 77 स्नैच की थी और 98 क्लीन की थी, सिल्वर मेडल था हमारा. और वहाँ से शुरू करके उसका जो डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, वो उसको आज ये चौथा मेडल है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में. और परफॉर्मेंस भी हिंदुस्तान में किसी ने वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं किया, 98 जर्क से 119 जर्क के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया एशियन चैम्पियनशिप में 2021 में. और फिर मतलब ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आप लगातार डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. जो आने वाले जो यंग जनरेशन है उसे बस यही चीज़ सीखनी चाहिए इस कंपटीशन को देख के, रिजल्ट देख के, कि आप 5000 दिन डेज लगातार अपना बॉडी वेट 48-49 केजी मेंटेन कर रहे हैं तो कितना खाने में डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता होगा, जरा आप सोचिए, उससे अंदाज़ा लगाइए. और उसके साथ फिर आपको ट्रेनिंग भी रेगुलर करनी है, कोई छुट्टी नहीं है. कई ऐसे मौके हैं, 2018 में ऐसे कॉर्नल गेम्स के गोल्ड के बाद ऐसा हुआ था कि बैक इंजरी होगी तो छोड़ना पड़ेगा, अब शायद होगा भी नहीं. लेकिन उसके बाद फिर इसने 6 महीने बिल्कुल कहाँ कहाँ डॉक्टरों के पास नहीं गए, और उसके बाद फिर स्ट्रगल करके अपने आप को खड़ा किया. तो मेहनत तो मीरा की है, मैं तो बस खाली साथ में खड़ा हूँ सपोर्ट करने के लिए.
3: Well, golden girl Mirabai Chanu, I don't know if we would be falling short of adjectives to really talk about Mirabai Chanu, the kind of incredible career that she has had. I mentioned this before that this was a hat-trick of gold medals for Mirabai Chanu, but it all started really with the winning that silver medal long ago, that was in Glasgow itself, and now winning India's first gold medal at Commonwealth Games 2026. She's the one who started it for our athletes in Glasgow Commonwealth Games, and then also smashed 3 Commonwealth records. She in fact set 3 Commonwealth records in her weight category. Women's 48 kg weightlifting is something that she was contesting in this time around. Remember, usually she goes for the 49 kg weight category. And of course, if we take a look at her exploits in these Commonwealth Games, it has been just an incredible journey for magical Meera. I want to go across to Boria and Rika once again. Then, Boria, you know, we were talking about our athletes being so humble despite their achievements. Then, you know, just take a look at someone like Mirabai Chanu. The girls in the boxing scene have just started collecting their medals, but this girl has been doing it for the last, what, about 12 years? And still, she is so humble, so down to earth. Whenever you speak to her, she always has her eyes set on the next target.
4: You know, I think my internet is a bit bad, Preeti. But if you can hear me, my internet is
3: Yeah, we can hear you clearly. Yeah.
4: But Mirabai Chanu is an incredible athlete. You mentioned the 3 Commonwealth Games records. Yeah, yeah. He, you know, the 3 Commonwealth Games records.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
3: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
4: Just few inches away. इस पी ओके
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: When others are warming up, welcome back. We're talking about some incredible stories of Indian athletes at Commonwealth Games 2026, and India bagged a golden 1-2 in para shot put at the Commonwealth Games. Soman Rana clinched gold with a season best throw, while Shubham Juyal secured silver. Here's NDTV's Vimal Mohan speaking to the two medal winners.
2: Bharatiya khiladiyon ne Glasgow Commonwealth Games mein tehlka macha diya hai, aur khas kar jo para sports hai, पैरा एथलीटों ने उन्होंने कमाल का काम किया। और सुमन, आपसे शुरू करते हैं राणा, कि आपकी वीडियो हमने देखी है, कैसे आप माइंस में, पुंछ में आपका माइंस में आपका पांव चला गया था, और उसके बाद यहाँ आके आज मैंने देखा जब आप फ्लैग ऊपर जा रहा था तो आप पहली बार मुझे थोड़ा इमोशनल लगे। बहुत अच्छा सफर रहा ये।
3: जी सर, बहुत खुश लग रहा है इतना बड़े मंच पर इंडिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने का टाइम मिल रहा है, और देश के लिए और पीसीआई साई सभी को मतलब मेडल देने का मौका मिल रहा है, इसमें बहुत खुश लग रहा है।
2: शुभम, आपकी भी कहानी शानदार, आप एसएसबी का इंटरव्यू देने जा रहे थे और वहां से मेडल तक।
4: मैंने ये नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 4 साल बाद मैं कॉमनवेल्थ खेल रहा हूँ, एंड नॉट इवन खेल रहा हूँ बट मेडल भी लेके दूंगा देश के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था।
2: राकेश जी, इन दोनों को तैयार करना और जो आम प्लेयर को तैयार करने में आपको क्या लगता है किसको ज्यादा मुश्किल है?
5: हाँ सर, इन लोग का मुश्किल तो नहीं है सर, बेसिकली ये लोग आर्मी वाले हैं मेन, तो पहले अंदर से पैसे वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनपे थोड़ा सा काम करने में इन्होंने रिजल्ट दिया।
2: सत्या सर, आप में एक बहुत खास बात है, मैं पिछले 10-15 साल से देखता हूँ, आप जिस प्लेयर के बारे में बोलते हैं मेडल मिलेगा तो उसको मेडल मिलता है।
6: कोई भी एथलीट को मैं एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली भी देखता है, उसका क्या दम है, उसका सब कुछ मेरे को थोड़ा सा पता चलता है। से मैं खुद इंटरनेशनल एथलीट था, वो मेरे को पता चलता है ये एथलीट का इतना दम है। मेरा साथ राकेश जी था, हम भट्ट को दोनों इस ये दोनों का इवेंट का टाइम में भी हम देख रहा था, ये एथलीट का कोर इतना अच्छा है, ये इतना फेंक सकता है, इतना इसका कोर नहीं है, इतना ही फेंक सकता है। मैं वो दूसरा खिलाड़ी का भी मैं एनालिसिस करके बोलता था।
1: Well, India's para athletes definitely delivered a historic performance there at Glasgow Commonwealth Games. But now the good news is that next edition of Commonwealth Games is going to happen here in India. 2030 Ahmedabad dream is going to be finally lived by all Indians here. Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave is going to be a big facility where the Commonwealth Games will take place. It's a 350-acre integrated sports precinct that's getting ready as India plans to host these Commonwealth Games in 2030. The centerpiece of this preparation is the Narendra Modi Stadium with its capacity of 1,32,000 seats. We know that this is the biggest stadium for cricket, and it will be one of the venues for Commonwealth Games in 2030. There is also a new indoor arena which has about 18,000 seats, which is going to be prepared for the Commonwealth Games in the next edition. There is also going to be a new aquatics center which will have a sitting capacity of 12,000 seats. Tennis center and multiple competition venues are getting prepared as India prepares for the next edition of Commonwealth Games, which will be 4 years later in 2030. Going back to our reporters, my colleagues Boria and Rika continue to be with me. Boria, for India, this is going to be another mega multi-sport event that we are very proud to host. A lot of people are questioning the sustainability of Commonwealth Games. What we saw in Glasgow was a much curtailed version, but the full version of these games will be back in 2030 as Ahmedabad plans to host it.
7: Absolutely, and 17 games. I mean, I was here at the Ahmedabad House in Glasgow when Harsh Sanghavi made that announcement as well. In fact, they are going to take the thing in the closing ceremony tonight. When 20 minutes of India, you will see a cultural performance where the baton passes, the flag passes from Glasgow to Ahmedabad. Look, the moment you say only Commonwealth Games, you can then actually question the sustainability. But for India, it's not just the Commonwealth Games. It's also the Olympic bid. It's also the 2038 Asian Games bid. It's India's moment in soft power, India's moment to take world sport over and make a statement. So the Commonwealth Games is actually a stepping stone to other events like the Olympic Games and the Asian Games. The moment

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
4: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
5: Just few inches away. Okay.
4: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: बच्चे ये ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा.
1: First give your name and what do you do?
2: Okay, so I'm Ananjay. I'm currently pursuing my bachelor's at IIT Madras. And I wanna point out that कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की responsibility होनी चाहिए. I accept that, but the point is कि पुलिस जो area जंतर मंतर से लेके संसद तक का, that is very highly protocolled area. वहाँ पे आप ऐसे randomly टहलने नहीं जा सकते. That is very, मैं मानता हूँ जंतर मंतर की उनके पास permission थी, but जंतर मंतर से आगे का उन्होंने क्या written में government से letter लिया था या नहीं लिया. At the same time अगर government से letter लिया भी था तो पुलिस वालों के ऊपर, मानता हूँ उन्होंने गलत किया, but at the same time पुलिस वालों के पास orders थे, मतलब जिन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट किया उनको मैं मान लो उन्हें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. बट अगर उनकी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास अगर कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो दे आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स. तो जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं दे आर सपोज्ड टू अकाउंटेबल.
3: लेट मी टेक हिज पॉइंट फॉरवर्ड. Only narrative we've heard in the news channels, except NDTV, other news channels, is that there were all these goons here. Somebody's a POSCO accused, somebody's a rape accused, somebody's so-and-so criminal, etc. That's the narrative we've heard. It's clearly put out by the government. Now, question one. I agree with what he said, that this is the most sensitive geography in the history of this country. What were the police doing? Were they snoozing? What was the home ministry doing? I'm not asking the honorable home minister. Why did you switch off internet? Because the entire protest was running on an internet. Do you not have common sense? It's basic common sense. Point number two. This is the Delhi that's seen two riots, one bomb blast under the same home ministry. Who will take accountability? And last thing, when the honorable ex-education minister resigned and he came to parliament, I want each one of you to see the garlanding and the hero's welcome he yes. got. 20 kids died. 20 kids died. His daughter studies abroad. I'm not comparing it. He got a hero's welcome. If this is accountability, sorry, accountability, wo hona chahiye tha. Dharmendra Pradhan ji ka waisa swagat. Aap kya inko murkh samajhte hain, sarkar?
0: मुश्किल ये है कि आपने हमें सुना ही नहीं. मैं तो पहले से ही पहले दिन से मैं रिजिग्नेशन मांगने वालों में हूँ. पहले दिन से मैंने कहा कि वो नहीं होना चाहिए. लेकिन एक बात बार बार तहसीन कह रहे हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं. अरे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता अभिजीत दीपके अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है. थोड़ा तो यार तहसीन सोचा करो. कुछ भी बोल
1: लेट मी आस्क अ लार्जर क्वेश्चन. इज दिस नाउ अ मॉडल दैट वी आर गोइंग टू सी रेप्लिकेटेड? एंड आर वी नाउ ऑल रिजाइन टू द फैक्ट दैट नाउ the pressure group will come from the streets and not from the parliament or the legislative assemblies of India.
4: Good morning sir. मेरा नाम अर्पण कुमार गिरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र हूँ. मेरा ये कहना है कि सर जैसे अब आप लोग कह रहे हैं कि अचानक से पुलिस आई और लाठी चार्ज कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऐसा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर आते हैं, बुक दिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उन्हें पूरा अलाउ करती है. अभिजीत दीपके को लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, 6 जून को उनको परमिशन मिल जाता है. अभिजीत दीपके को लगता है कि यह लॉन्ग टाइम पर परमिशन के लिए जाएगी, सॉरी तो वो भी मिल जाता है परमिशन. फिर सोनम वांगचुक जी आते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी एक दो दिन में हटा लिए जाएंगे, उन्हें भी नहीं होता है. जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि हमें इनका
3: ऑर्डर नहीं,
4: हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुझे इनका डेली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये देखो.
3: नहीं नहीं वो नहीं था, सॉरी, नो ही इज रॉन्ग
4: सर. लेट मी कंप्लीट.
3: बोलिए आप, बोलिए
4: कि तो उसके लिए अगर
3: ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए ना, क्या था?
4: उन्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी.
3: हाँ
4: ठीक है,
3: हॉस्पिटल ले जाना.
4: चूंकि एक मिनट, जो कि पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल फाइल हुई कि
3: ऑर्डर क्या था?
4: ऑर्डर ये था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए.
0: वही था, स्टेट से भी हो सकती थी,
3: वो तो स्टेट से हो सकती थी.
4: मेरा सवाल ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी सरकार की मांगते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? अभिजीत
3: दीपके न्याय मेरे पास बोलो,
4: जो मार खाए जिन्होंने अनकाउंटेबली विकसित बहकाने में आगे मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट में. दूसरी बात, पार्लियामेंट कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि आप बिना एनओसी के आ जाते हो घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है. अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स को कम से कम फॉलो कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज ने आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया, आपने 25-26 दिन पूरा प्रोटेस्ट किया. आपको जब मार्च करना था पार्लियामेंट, बस उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिला और आप उसके लिए आकर वायलेशन कर लेते हैं.
1: दैट एज अ सिटीजन इट इज आल्सो इनकंबेंट ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो द लॉ. एंड द बेसिक पॉइंट दैट डॉक्टर रंगनाथन वाज मेकिंग दैट इन मार्चिंग टू पार्लियामेंट बियॉन्ड जंतर मंतर द लॉ वाज ब्रोकन. एनी
5: मैम पद्मजा, वाज द मार्च टू पार्लियामेंट अनाउंस्ड ऑन द 6th ऑफ जून? वाज इट अनाउंस्ड इन द वीक्स आफ्टर? Why was the march to parliament necessary? क्योंकि ये सरकार सुनना भूल गई है ना. 31 दिन वहां पे दिन रात किसी को बैठना पड़ता है. आप संसद 200-300 मीटर दूर रखते हो, आपको तब तक आवाज सुनाई नहीं देती है, तो आवाज सुनाई देने के लिए किसी को आपके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है.
1: But no, then why march to parliament? No, tomorrow march inside this prime has minister's been a, this residence.
5: Has been a, no, this has been because then
1: tomorrow you somebody will barge into your threat, house, Anish.
5: Bigger security threat is marching to the prime minister's residence. Parliament is the temple of democracy, and that was the march. And Padmaja, let me tell you this. Let me also say this. For many of you, I was part of the Nirbhaya protests, and a lot of us raised our voice against how the Congress government shut down the Nirbhaya protests.
4: Even then,
5: मैं एक ही second बोलूँगा आपको, तभी भी जब इंडिया गेट पर लाखों लोग आ गए थे, उनको वाटर कैनन से हटाया गया था, पेलेट गन इस्तेमाल करने की बदतमीजी.
4: एक शॉर्ट
5: टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी देश
4: सर,
5: इस देश में
4: नहीं सर, मैं सिर्फ दो लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं. आपने कहा कि सरकार सुनना भूल गई थी, तो मैं बता दूं कि ये वही सरकार है जिसने फार्मर्स के लिए 11 बार कॉन्वर्सेशन भी करी थी, और उसके बाद हमने फार्मर्स बिल को रिपील करने के लिए. ठीक है,
6: मैं ये कहना चाहता हूँ,
1: डॉक्टर रंगनाथन यस.
7: Yeah, so, you know, I need to focus on not just the voters, the Gen Z voters, but whom they're going to be voting for in the future. And I hope my good friend Anish doesn't mind, they're going to possibly be voting for him. What he's saying is, ki hamari baat nahi suni, isliye humne law ko toda. Ye wohi log hain jo, this is textbook anarchy. Are we living in a democracy or are we living in an anarchy? What he is saying is, हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए पार्लियामेंट में बात सुने, इसलिए हमने इलीगली मार्च कर लिया दैट एंटायर एरिया. एंड आई वॉन्ट टू आस्क, देर वॉज अ स्टूडेंट आउट हियर हु मेड द पॉइंट दैट द एंटायर एरिया इज अ सिक्योर जोन. आई एम हैजर्डिंग अ गेस आउट हियर, आई डोंट नो हु दैट स्टूडेंट इज, बट यू टेक द माइक टू हिम, आई एम श्योर ही इज आइदर स्टडिंग साइंस और इंजीनियरिंग. इसमें रैशनल थॉट की जरूरत है, प्लीज आस्क.
1: He's a law student. Why do you have such a low opinion of law students? Yes.
3: He can argue both.
1: So let me ask you this. Okay, just a second. I again want to come back to the question. Are the laws now going to be decided on the streets? Is the Jantar Mantar model now the acceptable model moving forward?
0: First of all, when the previous exam papers leaked, no accountability was held. So, and it is the right of the people to protest. Why are we saying that we should have choices? We can have both. We can go to the courts and we can protest as well. And another, we are not
1: tomorrow,
0: talking.
1: Let me ask you this. Tomorrow you give a competitive exam. Somebody is not happy with you qualifying. If I manage to get 5,000 people, aapka naam kya hai?
8: Yash.
1: Kal ko main kahun, Yash ka admission cancel kar do. Main zyada deserving thi. Main nahi agree karti ki Yash ko admission milna chahiye. Aapka admission rad ho jana chahiye.
3: That's trivializing. No.
1: It's about the pressure group. It's about the pressure group. Look, it's about the pressure group, Tehseen. Today, the fact is,
3: because he got admission. There were people who died.
1: There are many people who have legitimate arguments and causes, but they do not manage to mobilize people. So they are unheard. And unfortunately, that is the precedent that has been set.
9: सवाल करना चाहूंगा. 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, 2015 में प्री नीट का पेपर लीक होता है, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2026. 15 से लेके 26 तक कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात की? जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचे, कौन सा ऐसा नेता था, प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, जिसका कोई भी बयान आया, ट्वीट आया, या किसी ने कुछ भी रिजाइन की बात की? तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं, अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता, तो किसे पता लगता कि भगत सिंह क्या कर सकता है? तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट.
1: विल द सीजेपी प्रोटेस्ट हैपन नेक्स्ट एट कर्नाटका एंड पंजाब? व्हेन इज इट हैपनिंग? बिकॉज़ Congress is protesting. I have to say, the Congress is protesting in Parliament, and yesterday Charanjit Singh Channi protested in Punjab also. Yeah. When is the CJP planning to protest in Punjab?
5: I certainly hope that they'll protest in Punjab soon. But what I will say is that what has unfolded over the last few weeks should worry the government. If I were the Home Minister and the Prime Minister, I would call for an all-party meeting, because there is a fundamental disconnect between this government and young people. If you feel like you are not being listened to, if you feel like actions are being taken without you being consulted, then there is going to be a democratic trust deficit that is very difficult for any government, for any political party to overcome.
1: Okay, tell me your name. What's your point?
6: So I'm Ronak Chaudhary and currently I'm a class 10th student and the youngest among all of here people here.
5: So are you Gen Alpha now?
6: Yeah. So yes, so my question is to the Congress. See, accountability cannot be selective, right? So main aapke samne kuch facts and figures rakhna chahti hoon. 2005 Railway Recruitment Board ka exam leak hota hai. No minister resigned, no accountability taken. 2011 mein AIEEE ka paper leak hota hai. No union minister resigned, no accountability taken. Rajasthan pre-medical test 2008 mein leak hota hai. Again, no accountability taken, no union minister resigned.
3: No, listen, I absolutely think all governments in India have let down you people. Why should I do whataboutry? There is absolutely no reason. It is your life, your future. You think the Karnataka education minister is good? He's terrible. The point is, I hope cockroach protests. If they don't, it is not the responsibility of cockroach to protest. They are students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong. Let's learn to stop this whataboutry. If people are dying, if people are losing out, we must.
0: Padmaja.
1: I think she is only saying I demand equal accountability of everyone.
3: I think they
1: not
3: should.
1: What about
3: I think you should. And I think, sir, one second, one line, sir. I think you should. I think you're absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should buck up. I totally agree with
0: you. Padmaja, ye kamal ho gaya. पहली बच्ची है जिसने ना तो एब्यूजिव लैंग्वेज की बात की, सिर्फ इश्यूज की बात की और तुरंत ये व्हाट अबाउटरी करने लगे. व्हाट अबाउटरी नहीं है भाई, फैक्ट्स को रखना. ये व्हाट अबाउटरी कैसे? और मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियस है ये. किसी ने अभी कहा कि अगर शायद अनीश ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर डेमोक्रेसी में किसी को भी लगे, कोई भी एक जनरेशन को लगे कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है. झारखंड में हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे. झारखंड में देश के दूसरे राज्यों. सवाल यहाँ ये, क्या हम ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक पर रेजिग्नेशन दिया है. हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफॉर्म होंगे.
6: नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉइंट, बट जब अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अकाउंटेबिलिटी नहीं की. आई नो दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, दे हैव जस्ट अमेंडेड द बिल एंड दे आर प्रपोजिंग इट इन द पार्लियामेंट. बट आई बिलीव दैट द ओपोजिशन जो अपोज कर रही थी, अब तो पास हो गया खैर, बट जो अपोज कर रही थी, एंड वन ऑफ द मिनिस्टर सेड ओपोजिशन का काम है अपोज करना. तो यू गाइज आर रियली ओल्डर देन मी, ठीक है? तो बट हमने क्लास 8 की सिविक्स बुक में पढ़ा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द ऑपोजिशन एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ ऑब्स्टिकल टू आवर प्रोग्रेस.
3: राइट. सो कैन आई
1: गिव वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट? आई थिंक मोर पीपल वांट टू कम इन. जस्ट अ सेकंड, देन आई गो टू डॉक्टर रंगनाथन. वन पॉइंट,
8: जस्ट वन पॉइंट मैम. टू थिंग्स. फर्स्ट, जब आप बात करते हो ब्लेम, सुनो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज मैम वी प्ले ब्लेम गेम. हमें हिस्ट्री बहुत पसंद है, फिर तो हम बात करते रह जाएंगे कर्नाटका में से, पंजाब. अरे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लो, हम नेक्स्ट पे भी आ जाएंगे. इट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया टू आस्क क्वेश्चन, नॉट द गवर्नमेंट. हम सुधार लेंगे उस चीज को पहले. आज जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लेते हैं मैम, वो बहुत.
5: दिस इज लाइक,
1: you asked a very good point. What's your name?
10: Anurag.
1: Ha, Anurag, you're absolutely right. Yeah, it's the job of the media to ask questions of the government. Yes. And what this young lady also said, she's asking questions of the government only.
5: No, no.
1: But the government of Karnataka,
5: choti si baat
1: and
5: hai.
1: The government of Punjab, equally accountable. Padmaja, like every other.
3: Padmaja.
1: Just a second. Dr. Ranganathan.
3: Yeah, but
1: it's
3: after,
1: not a blame
3: yeah.
1: game.
5: Pehli baat,
1: asking for equal accountability. Dr. Ranganathan, yes.
7: Thank you. Look, this is textbook hypocrisy. When the demand, we're not going into history. When Dharmendra Pradhan was the education minister, there were two other sitting education ministers under whom the same malafide happened. Bangarappa of Congress Karnataka and Harjot Singh of AAP Punjab. They continue to be education minister. So, ye kehna pehle isko karo wo nahi. Khud hypocrite ho, double standards hai. Maan lo, aage badho. Number two, for once I agree with the Gen Z, Padmaja, give me 30 seconds. Why? Because yes, this is a cowardly government. It does not listen to reason and logic and genuine protesters. It listens to mob violence and street blockage. It listened to them during farm laws when it repealed them, and it's hurt them now. So it depends on the cowardliness of the government, which it is cowardly. I agree with the Gen Z.
1: And that is the model now, whether you like it or not. People want to be heard and they are going to do it in any avenue that is available to them. But I want to ask all of you, just a second. If the CJP today was to become a political party, is that a good thing or a bad thing?
5: Ma'am,
1: do you think
5: thing?
1: They should become political? Should they be an organized party? You go first.
11: Ma'am, firstly, I have to just
10: tell one thing to each and every one of you, that Gen Z is not fool, right? We are getting what everyone is doing. We are also understanding the hypocrisy. We are also understanding the double standards. And now as we are asking questions about what is happening in Karnataka and what is happening here, ma'am, I have one question. Education minister resigned here. Ruling power, do they want same thing to happen in Karnataka? Itne bade level pe koi protest hona chahiye? Uske baad do we think ke uske baad koi minister resign karega? Only question I have is, ke government choti cheez pe kyun nahi accountability leti hai? Why do they want ke koi bahut bada protest ho, koi bahut badi cheez ho jaye, uske baad hum accountability le? Ma'am, why 31 days? Agar government chahti, to it could have happened in 1 week. Or just one question, 40 days lage. Us time pe bahut sari aisi cheeze mujhe nahi honi chahiye thi. To kya government wait kar rahi thi ke pehle hum apni kuch cheeze nikal lein jinko hum resign karane ke baad un pe baat kar lein? Why not in 1 week? Why 31 days is my question. Okay.
1: But you didn't answer my question. If the CJP was to become a party, would you vote for?
7: Why not in 1 day?
10: Ma'am, CJP firstly is not a party now. It is a student movement. And I guess every party started as a student. Ma'am, if they become a party, they have to do a lot. Right now, they have given us a hope. But if they are doing the same sort of things, I don't think so they're going to work. Anyone who is doing the right work should get the chance. And chance is important for everyone.
11: Ma'am, yahan par hum ye dekh rahe hain. Absolutely. Look, I'm an Anurag and I'm MBA student, so always we know that the alternatives are better. You know, alternatives are better. Democracy is what? Democracy is about more things. BJP came by protest. Congress came by protest by freeing India. BJP came for the Ram Mandir. CJP can also come. Why cannot?
1: Because, you know, a lot of people are arguing that CJP was effective because they weren't a political party. Congress wasn't as effective because they're a political party. CJP was more trustworthy. Maybe the NCP, no. Sharad Pawar wasn't as effective because they are a political party, Anish. Should the CJP become political party or not?
5: I would welcome the cockroach Janta Party becoming a political party.
11: Yes, yes.
5: Any young people's movement today should establish itself as a political party. Like he said, he wants to become a politician. Young people want to become politicians today, and we need more avenues for them to achieve success, to have a platform.
1: Tomorrow your friend Ashutosh will contest against you.
5: And I will welcome that, because that is the beauty of democracy, and we will hold them accountable.
1: All right. People's movement or political party? What do you want from CJ?
12: Ma'am, see, first of all, you also posed a question over there, that is mass mobilization the new form of how laws are going to be established in this country? Talking about lawlessness, is right to education not a fundamental law in this country? Is it not? And if asking for accountability in education, let alone किसने पहले law तोड़ा, first of all, अगर education के paper leak होते हैं, अगर student रोज रो रहा है, तो पहले law किसने तोड़ा? उसके बाद, if you are asking about students to be disciplined enough, I completely agree they should have never done something that is illegal. But who is provoking them to be illegal in the first place? And answering what you said, you know, is CJP should be a political party or not? I mean, giving a chance to a political pressure group coming in, and if, okay, first of all, you also said कि अगर you know उनके paper के against, if you gather 5,000 people, will he have to leave his seat? First of all, people do not come to streets like that. He was also saying that at that point. Itne log agar streets pe aaye, the issue was genuine. Yes. Lakhs of people throughout the country. It was not just Delhi. It was the entire country, every state. Even my city, I come from a tier 3 town. There as well, students from class 11th and 12th were trying to
1: Where
12: protest.
1: Are you from?
12: I am from Rudrapur in Uttarakhand. It's the smallest city you would have never even heard of. People
1: I've actually been to Rudrapur, but yes, go.
12: Great. The point is that if so many people are resonating with one issue, log keh rahe ki sway ho gaya generation. How is the generation swayed if lakhs of people across country are coming to the streets? There is
1: so would you rally behind a people's movement or a political party? What do you prefer today? Should CJP stay the way they are?
12: Ma'am, CJP is a political pressure group. It worked once. We don't know what next issue they are able to mobilize people on. Neat leak. Bohat
1: so largely,
12: issues.
1: Who would you prefer? A formal political party, whether it is Congress, NCP, BJP?
12: Depends on what agenda they bring to the table.
1: Depends on what agenda. Yes, ma'am.
3: Well said.
7: Padmaja,
13: so,
7: can I please
13: My name is Deepthi, and I want to give my take on the thing that ki 2024 mein paper leak hua, 2025 mein paper itna tough aa gaya ki bacche usko crack nahi kar paaye, and 2026 mein again hame paper leak dekhne ko mila. So it is not a thing ki hame decades mein dekhne ko mil rahi hai, hame bahut jaldi jaldi ye cheeze dekhne ko mil rahi hai, and why not we demand accountability for that? Aur hame ye kaha ja raha hai ki why are we taking the path of violence? Kyon hamari baat 2024 mein bhi nahi suni gayi? Ab hame jab 2026 mein apni baat sunane ka mauka mila, tab अभी हमें ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही पीसफुल रहिए, जबकि हमारी बात सुननी नहीं जा रही है।
5: एक छोटी सी बात,
1: देखिए 2024 में लॉ आई थी, बट यू आर सेइंग एट दैट टाइम इट वाजंट सैटिस्फैक्टरी इनफ। जस्ट अ सेकंड, डॉक्टर रंगनाथन इज नॉट हियर, आई फील रियली बैड दैट ही इज पेशेंटली। देखिए व्हेन यू आर पीसफुल डॉक्टर रंगनाथन, मे बी दैट्स द लेसन, व्हेन यू आर क्वाइटली सिटिंग इन योर रूम एंड रेजिंग योर फिंगर, नोबडी लिसंस टू यू। नाउ जेन ज़ी हैज आल्सो लर्न द लेसन, नेक्स्ट टाइम यू शुड आल्सो कम हियर एंड सिट ऑन धरना।

0: Try to commit a riot.
1: Oh, Hindu Muslim again, Hindu Muslim again, Hindu Muslim.
2: Okay.
3: Look, I just want to
1: again Hindu Muslim.
0: You understand what analogy is? Do you understand the logic? Meri samajh mein nahi aa raha.
2: Okay. All right. Maybe. One person maybe you can. Everyone wants to respond.
0: Commit illegality.
4: So sir, so sorry sir. Let's back to the topic. Education reform से बात करते हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये इस्तीफा पता नहीं कितने साल पहले हो जाना चाहिए था। वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स। 94,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए, 1,00,000 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे जो सिंगल टीचर्स पे चल रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स। नीट लीक इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, वी आर हैविंग सो मेनी एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो उसके चक्कर में इस्तीफा तो बनता था।
1: और यहां
2: आई थिंक बात वहां पे हो रही थी, इट वाज अबाउट प्रोवोकेशन। इज रिस्पॉन्स टू अ प्रोवोकेशन जस्टिफाइड सिंपली बाय सेइंग दैट आई वाज प्रोवोक्ड? दैट वाज the logic being given over there? Yes, this one gentleman here and then Harshvardhan.
5: आपने जेंटलमेंटल मॉडल की बात करी थी, मैं उस पर सिर्फ दो मिनट लूंगा और दो तीन सवाल है, सर से भी पूछूंगा और जो रंगनाथ सर है उनसे भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा।
3: ये वकील साहब पूछिए।
5: जी बिल्कुल। मेरा जैसा कि है कि अगर जो हंगर स्ट्राइक है वो एक राइट टू प्रोटेस्ट के लिए दिया गया था और वो वॉइस रेज करने के लिए दिया गया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को CJP के प्रोटेस्ट को इसलिए याद किया जाएगा कि कैसे हंगर स्ट्राइक को सरकार को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत अच्छे से
1: गांधीवादी तरीका है, ये गांधी का देश है।
5: सेकेंड थिंग, अगर देश में जैसे कि ब्लैकमेलिंग के लिए क्यों? क्योंकि अगर इस देश के 140 करोड़ आबादी, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही, अगर वो हर चीज़ के लिए अपनी प्रॉब्लम के लिए हंगर स्ट्राइक को भेजे फिर ये देश खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, अनिश ने कहा कि CJP अगर ये इलेक्शंस में आती है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, तो ये आज एज ए स्पोक्स पर्सन इनका पहले से ही मतलब वो जो था वो इमेज क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि इनको जब शेयर करना था स्टेज तो अरविंद केजरीवाल और जो पार्टी पॉलिटिकल मेंबर्स थे वो आते थे स्क्रीन।
2: आप क्या कह रहे हैं कि ये सस्पेक्ट है क्योंकि इनके पॉलिटिकल एंबिशंस है? ये तो किसी का भी हो सकता है ना, दे हैव अ प्रेशर ग्रुप। जस्ट अ सेकंड हर्षवर्धन जी, देन आई एम कमिंग टू यू।
6: एक सवाल मेरे मन में है, आप में से कितने लोगों को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है?
7: Yes, sir, we know.
6: एक मिनट, बीच में नहीं। कितने लोगों को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है? आपको पता है? आप उनको माइक दीजिए जरा। आप तो पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, इतनी देर से सब कुछ कह रहे
1: हैं,
6: नहीं पता आपको? आपको पता है?
1: Excuse me, sir, do you know everything about this country?
6: एक मिनट,
1: do you know everything about this country?
2: Sir,
1: you are misleading the students by telling them that Abhijit Deep के US से
6: पढ़ा है उनको, जिनको पता है उनको दीजिए। आप उनको,
1: I am hearing,
6: अरे उनको माइक दीजिए ना।
2: ओके अनुराग, गिव इट टू,
1: आपको सब कुछ,
6: आप उनको माइक दीजिए, आप उनको माइक दीजिए,
1: दो क्वेश्चन पूछ लूं।
6: अरे माइक तो दे दो भाई, माइक दे दो, मैं समझ गया, तुम्हारा समझ में आ गया। इस तरह से लड़ने के लिए नहीं आते डिबेट में ना।
2: ओके गो ऑन खुशी, गो ऑन गो ऑन।
7: सो फर्स्टली टू यू, as you said, उनको आपने क्वेश्चन पूछा?
6: नहीं,
7: सर, लेट मी से नाउ,
6: क्वेश्चन नहीं किया,
7: सर, यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी।
6: राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है?
7: हां
6: तो आप बताइए ना, बताइए।
7: यस मैम, as he said, firstly we are here to ask question, not to be asked. Second, sir, about the committee, sir, this was a 7-member committee, and as I have read about that, sir, now let me tell, as I have read about that, the document says that 76% of the things that the committee deciphered, 101 demands, they have been implemented is the word, sir. आपको नहीं लगता 76% ऑफ जो उस कम्युनिटी ने बनाया, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया था, उसमें एक भी ऐसा रूल हो जिससे एग्जाम लीक ना हुए हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द कमिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट, सर, इफ 76% इज इम्प्लीमेंटेड,
6: कह रहा हूं, एंड देन बहुत अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि खुशी ने पॉइंटेड बात की है।
7: मैम आई हैव वन मोर क्वेश्चन।
6: राधा कृष्णन कमेटी ने 101 रिकमेंडेशंस दी, जिसमें से 57 इम्प्लीमेंटेड है, बाकी पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है, बाकी लॉन्ग टर्म है, उसके बावजूद ये पेपर लीक नहीं। हम क्या है ना, इस वक्त जो डिबेट हो रही है कि हमने मूवमेंट किया 24 में कुछ हुआ नहीं था, तब भी कुछ नहीं हुआ, हमें कम से कम फैक्ट पे बात करना चाहिए, स्पेशली जब हम जेंजी की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो NTA आया क्यों आया था, क्योंकि ऑल इंडिया PMT एग्जाम में ढेर सारी गड़बड़ियां थी, पेपर लीक थे, सीट बिक जाती थी। NTA भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें उसमें भी रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन वायलेंस कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता है।
2: I think this is an ongoing debate. I'm very glad we managed to get all of these voices on board. I am running a little short of time, so I want to end with a show of hands. The resignation of Dharmendra Pradhan, and this was one thing that everyone was very directly sure of. This is our one takeaway. Who gets credit for it? Raise your hands if you think it is the CJP.
1: It's the people here. We.
8: Students.
2: Raise your hands if you think it is the students.
8: Students of the country. Yes.
2: Raise your hands if you think it is the opposition parties.
8: No.
2: All right, that's an interesting takeaway. Today, as of today, who is the most popular youth leader according to you? The CJP.
9: No.
2: Rahul Gandhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: ये लीजिए भाई मैंने बनाया है।
10: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
9: सर आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: डेढ़ महीने पे।
9: आपकी फैमिली है?
10: कौन?
9: बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: नहीं अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
11: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
12: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
9: जस्ट फ्यू इंचेस अवे।
12: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
8: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
13: so many attacks,
8: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
13: It's incredible.
8: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
13: Welcome to Left, Right and Center.
8: Hard facts.
13: War struck country.
8: Hard questions.
13: In the Ukraine.
8: 30 years of trust.
14: In the Kargil area.
13: North Ukraine. In France. In Italy.
14: At Srinagar.
13: INS Vikrant.
14: Vishnu Shom for NDTV.
8: Vishnu Shom. Only on NDTV.
15: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that
16: Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold an all-party meeting. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds all-party meeting in Karnataka. An opposition slams FIR against Rahul Gandhi over

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है, शर्म नहीं आती है लोगों को?
1: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ, चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में नहीं आया। आप, चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें, इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
2: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो आप, भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
3: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
4: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan, United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
5: देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है, इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
6: Arrest of suspected terrorist Hamim Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Hamim Mandal and his elderly father used to running a hoshiari business that would be given to told that the government business were used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused and the owner of this place, Hamim Mandal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
3: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind me,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hamid Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
13: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
14: द रिपल्सिव ड्रामा एनेक्टेड बाय राहुल गांधी एंड हिज कोटरी इन द पार्लियामेंट प्रीसिंक्ट्स हैव ग्रीवियसली डिमीन्ड द हिंदू फेथ एंड हैज इंसल्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ क्रोज ऑफ Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest and it was deliberately intended to ridicule and mock the Hindu Dharma.
15: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
16: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता, ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
17: राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
18: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है।

0: उन पे किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
1: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में, जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे। तो आप भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
2: देखिए ये BJP के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते। ये BJP के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
3: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan, United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
4: देखिए जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी।
5: Arrest of suspected terrorist Hamim Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Hamim Mandal and his elderly father used to running a hoshiari business that would be given to told that the government business were used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused and the owner of this place, Hamim Mandal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a government factory, but what we do not know whether it was a shield behind the entire plot. Police has already arrested Hamim Mandal and his close associate, his girlfriend from Jharkhand. Now this investigation led investigator to this particular place, which is located in Howrah, and many plot is been busted.

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hami Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing a Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
1: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ. और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
2: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest, and it was deliberately intended to ridicule and mock the Hindu Dharma.
3: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए.
4: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था. बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता. ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है.
5: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में। 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया। और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है। शर्म नहीं आती है लोगों को?
6: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप, चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा

0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that today?
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands.
3: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hami Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign. 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing a Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
4: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ. और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
5: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest, and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma.
6: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
7: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक एफआईआर लगा देता, ये एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
8: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दान पेटियां दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
9: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पे किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे।

0: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
1: This location from Tel Aviv
0: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
2: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
3: The Ayatollah Khamenei is gone.
4: There has been a missile attack right behind you.
5: And we need to rush into a shelter.
6: Heading there.
7: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
0: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
8: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Politics over Kaveri water row. DMK hits out at Chief Minister Vijay, says he's scared to hold all-party meet. Karnataka BJP chief writes to Vijay, seeks cooperation. DKS holds an all-party meet in Karnataka. Opposition slams FIR against Rahul Gandhi over Chanda Chori skit in Parliament. BJP says Rahul hurt Hindu Aastha. Opposition asks, didn't the scam at Ram Temple hurt the sentiments of the Hindu community? A major terror probe breakthrough in Bengal. The STF claims arrested accused Hami Mondal was linked to Pakistan-based handlers with alleged plans to target Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and carry out sabotage at the Jantar Mantar protests. And a scuffle broke out at Pappu Yadav's Delhi residence after a shoe was hurled at him over his Chanda Chori protest. The independent MP makes big claims that the alleged attacker brandished a knife and attempted to kill him. Nasha Mukt Bharat push begins. Prime Minister launches anti-drug campaign, 100-week drive against drug abuse. Over 1 crore youth take pledge against drugs. And flood fury continues to batter Assam. The death toll has climbed to 82. More than 78 lakh people have been affected across the state. Relief and rescue operations underway. India delivers a blockbuster performance at the Commonwealth Games, clinching 16 medals in a single day. A historic boxing haul powered the surge as the country tally rose to 39 medals, with India climbing to fourth in the standings. The political battle over the parliament skit on the alleged Ram Temple donation theft is now intensifying. An FIR has been registered in Varanasi against the leader of opposition Rahul Gandhi, along with MPs Pappu Yadav and Avdhesh Prasad, over allegations of hurting religious sentiments during the protests. BJP has launched a blistering attack accusing a Congress of mocking Sanatan Dharma and insulting crores of Hindu devotees. The opposition has hit back in unison. The Congress says that exposing alleged theft of devotees' donation cannot be treated as a crime, while Shiv Sena, UBT and the TMC have backed Rahul Gandhi, calling the protest justified, accusing the BJP of using FIRs to silence political opponents, saying that the actual Chanda Chori has hurt the Hindu sentiments.
9: घटिया घिनौना और आपराधिक कृत्य था. संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ. और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए.
10: The repulsive drama enacted by Rahul Gandhi and his coterie in the parliament precincts have grievously demeaned the Hindu faith and has insulted the sentiments of crores of Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest, and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma.
11: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
12: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है, कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक एफआईआर लगा देता, ये एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
13: राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दान पेटियां दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉज होता है? शर्म नहीं आती है लोगों को?
14: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो एफआईआर कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पे किस बात की एफआईआर कर रहे हैं भाई? किस बात की एफआईआर है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
15: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई, भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। डकैती हुई, चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो आप भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
16: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते, ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
8: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish e Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination. NDTV has accessed the FIR. Two arrests were made in two different states. Accused Arpita was nabbed from Jharkhand, and prime accused Hamim alias Hamim Fugo was arrested in Bardhaman. The investigation points to an alleged international footprint with multiple WhatsApp numbers linked to Pakistan, United States, United Kingdom and Mexico now under scrutiny. FIR names Hamim Mandal, Hamim Fugo, alleging he ran an espionage network, received instructions for Pakistan and maintained several foreign-linked WhatsApp connections. Investigators claim that the network gathered intelligence on VIPs and key installations, recruited locals and planned kidnappings, murder and other crimes. The FIR alleges Hamim and Arpita worked together using a honey trap to target Suvendu Adhikari as part of a larger conspiracy, with fears of his assassination as the West Bengal chief minister. It is also alleged that the conspirators planned to disguise themselves as police personnel, infiltrate the CJP protests at Jantar Mantar and attack the demonstrators.
17: देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है. दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट. तो हमारी सरकार इसको इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी.
18: Arrest of suspected terrorist Habib Mandal led this investigation team to Kolkata's Howrah Spilkhana area, where we are currently situated on. What we can tell you that this particular location, which is at the 7 Alam Mystery Lane, this particular rented place is was the place where Habib Mandal and his elderly father used to running a hushyari business that we are given to told that the government business used to be running from this particular place. Since couple of days, this particular place is being locked, and suspectedly that the prime accused the owner of this place, Habib Mandal's father and others, they fled this premises. As you can see that these are the belongings they used to carry over here. For past 9 months, this particular place used to be used as a government factory, but what we do not know whether it was a shield behind the entire plot. Police has already arrested Habib Mandal and his close associate, his girlfriend from Jharkhand. Now this investigation led investigator to this particular place, which is located in Howrah, and many plot is been busted by the investigating team.
8: The Kaveri water dispute has once again taken center stage, with the political battle intensifying in both Karnataka and Tamil Nadu. Political rhetoric escalating, Karnataka Chief Minister DKS held an all-party meet to resolve the issue. He assured the leaders that farmers' interests will be the highest priority. Tamil Nadu Minister CT Nirmal Kumar said that Karnataka Chief Minister DKS had good relations with DMK and he is taking DMK's concerns in consideration. Karnataka BJP President B.Y. Vijayendra has written to Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay, urging him to adopt a statesman-like approach to resolve the long-running Kaveri issue. DMK has stepped up its attack on Chief Minister Vijay and alleged that the Chief Minister is reluctant to convene an all-party meeting because his wrongdoings could be exposed.
19: The order, the stand of Karnataka government is that I have to take my opposition party leaders into confidence. I have to seek the legal advice

0: राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए, और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य उनके द्वारा, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिंपल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने, जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूं, और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
1: द रिपल्सिव ड्रामा एनेक्टेड बाय राहुल गांधी एंड हिज कोटरी इन द पार्लियामेंट प्रीसिंक्ट्स हैव ग्रीवियसली डिमीन द हिंदू फेथ एंड हैज इंसल्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ क्रोज ऑफ Hindu devotees. Will Rahul Gandhi and his coterie will they dare to abuse other faiths and commit blasphemy in the most debased manner in which they have humiliated Hindu faith? It is very clear that Rahul Gandhi's protest was a farcical protest and it was deliberately intended to ridicule the and mock the Hindu Dharma.
2: जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान के लिए, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
3: राहुल गांधी पप्पू यादव जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक ठीक ही था। बीजेपी का ये कायदा है कोई जिसको विरोध कुछ करता तो एक FIR लगा देता, ये FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल जो किया है ठीक किया है।
4: राम मंदिर की चोरी का मुद्दा उठाना ये अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में, 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए, बड़े मछली छूट गई, छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया, और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर FIR लॉज होता है, शर्म नहीं आती है लोगों को?
5: क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है? और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पर किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें इनका जवाब राम जी खुद देंगे, जो ये कर रहे हैं ना इनका जवाब राम जी देंगे इनको।
6: मैं भी हिंदू हूँ और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई, भावनाएं उस दिन आहत हुई जिस दिन चोरी और डकैती हुई। चोरी छोटा शब्द है, और चोरी किसके निज़ाम में हुई, डकैती किसके निज़ाम में? जिनके नाम से गाने बनवाए गए थे, जिनको बड़ा दिखाते हुए रामलला को छोटा दिखाया गया था, जो फलाने को राम को लाए हैं, आज गाना बनवाओ नया, जिन्होंने चंदा खाया है उनका क्या करेंगे? तो भावनाएं वहां आहत होती है। और मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूं कि इस देश में अगर आज कबीर वापस आ जाए, उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी की रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ा, किसी के करप्शन को नहीं छोड़ा। कबीर पे UAPA लगता इस होम मिनिस्टर के दौर में, कबीर जेल में होते बिना ट्रायल के।
7: देखिए, ये बीजेपी के लोग सनातन धर्म को न मानते न सम्मान करते, ये बीजेपी के लोग केवल और केवल सनातन को वोटों के लिए, नोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई है, डकैती पड़ी है, उसको हम लोग बेनकाब कर रहे हैं और करेंगे।
8: A sensational FIR has uncovered an alleged Jaish Mohammed linked espionage and terror conspiracy, with investigators claiming that the network had international links, targeted VIPs and even plotted attacks and political assassination.